0: फैशन आईक्यू, फैशन आईक्यू, लेटेस्ट डिजाइन, ट्रेंडिंग आउटफिट्स,
1: लेडीज सूट, लहंगे, गरारे, शरारे,
0: कुर्ते, पजामे, शेरवानियाँ, कोट पैंट, ब्लेजर अते किड्स फैशन।
2: दरियावां तो
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना होवे।
4: बस इन्नी गल।

0: बाबा शुक्रिया जी रेडियो।
1: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो, अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए, इहदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि बोली ना रही तो कवितावां रुल जानियां, मावां दियां लोरियां दवावां रुल जानियां, एडे महंगे मुल वाली चीज ना गवा दियो, वेखे ओ पंजाबी ना भुला दियो, वेखे ओ पंजाबी ना भुला।

प्रोग्राम सब रंग दे नाल जुड़ चुके सारे ही दोस्तां मित्रां भैन भरावां सोहणिया सोहणिया चेहरिया बुजुर्गां ते रब वर्गियां मावां नूं बहुत बहुत प्यार सत्कार अदाब नमस्कार निघी जी आयां नूं ते प्यार भरी सत श्री

जेड़ा पंछी यार बनाया चूरी कुटा ते ओ खांदा नहीं ओनू दिल दा मास खवाया होए की उडनी नी ओ ऐसी उड्या।

0: रहा ताप गया प्रब आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ संगत ते सब पल पाए सतगुर के बल जाई हलत पलत कब होवे सवारे हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया
1: अच्छा ना इस गल कर लगे दिल का तहता ही दसे

ताप छोड़ गया परवार, गुरपुरा है राखी सन सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप को आदत वाला, सात सहज सुख किन मह उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहा। हर हर नाम दियो दास, तिन सगला रोग निदारो, अपनी कृपा तारी तिन सगली बात सवारी, प्रभु अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण न बिचारिया, गुर का सबर भयो साथी तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा तू साहेब मुनी गहरा, जब नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी।

पेट तट पुनीत पई गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबनी थाई रव्या आद जुगाद जाता बड़ प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब पाए सतगुर टूटे।

रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहा। अखंड कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंचम, साथ पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहा। ताप पाप संताप मिना से, हर सिमरत किल विक सबना से, अनहद करहो मिला।

0: अच्छा मारो दोपहर वेडिंग स्टोर
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार सा स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना हो गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली हैं। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी हैं, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये ज़िंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ज़िंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप इंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप ज़िंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मज़ा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल पे है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्क में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को 519-500-46-1260 किचनर वाटरलू ब्लॉक में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को। जी हाँ, नसीब खेंड आपको
बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-546-1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो, तो आप 416-524-604 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको क्लीनिंग का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर क्लीनर डिपो लंदन में मौजूद है गोल रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और क्लीनिंग का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर क्लीनर डिपो, तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर हैं, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड सर में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, प्रोग्राम घंटा, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, तो सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने।

जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको HK मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए। 416-524-7004 416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब। और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप HK मूवर 416-524-7004 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम के अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाण स्वादा पला, हैव अ वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोइम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली दो लाइनें लिखी हैं, तो आपको साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोइम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोइम्स लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली दो लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्व्स, लायंस, लायनेसेस एंड ऑफ कोर्स पिग्स, यस पिग्स, आई डांस विद पिग्स एंड माइक।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ ते। आओ अज दा दिन असी शुरू करिए प्यारियां प्यारियां गल्लां दे नाल।

0: Sumner Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। Honestly, बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इम्प्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉट सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: ਭੈਣ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ।
4: ਤਵਾ ਕਿਚਨ, 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca, 905-790-1699,
5: 5905-790-1699. ज्यादा इंफॉर्मेशन लिए आज ही कॉल करो 416-518-3200, 416-518-3200।
6: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नु, जदो असी फूड ले।
7: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
8: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मानता। चैंपियन इन पराठा मार्केट,
9: जो कि मिल रहा है 2410 30 Rambler Drive, Brampton, close to Kennedy and Steels, 905-451-2600, 905-455-2600.
7: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
8: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट,
9: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 Rambler Drive, Brampton, close to Kennedy and Steels, 905-451-2600, 905-455-2600।
10: याद है मेनू, जो तो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दिती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
11: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ भूल रहे हो?
12: ड्राइविंग लाइसेंस?
11: नो।
12: पुलिस ऑफिसर?
11: नो नो।
12: ट्रैफिक लाइसेंस?
11: नो।
12: देन
13: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ली। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-1900, 647-325-9100, पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
14: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
15: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
16: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
17: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
18: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1, रेडियो आवाज।

0: Sound Live and Cellular Point present Ami World live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto wale ready ho jao. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: मौसम नू पूरा एंजॉय कर रहे ने ते मैं तुम जानकारी दे दिया कि जिन्हां दे घरां दे विच फंक्शंस ने तुसी टेंट वगैरह लगाने होण तां इन्हां दे कोल गलबात करो मल्ली टेंट सर्विसेज दे नाल गलबात करो इन्हां दे कोल 10x10 feet तो लैके 40x160 दे सारे साइज दे टेंट्स अवेलेबल ने क्लीयर टेंट भी लै सकदे हो वाइट टेंट्स भी हैगे ने ते सारे वाटरप्रूफ टेंट्स लैके आउंदे ने मीं कणी दा मौसम होवे चाहे स्नोफॉल हुंदी होवे जिद्दां दा मर्जी मौसम है इन्हां दे सारे वाटरप्रूफ टेंट्स ने कितों भी इक जगह तों भी कह लो कि तुहानूं मौसम दे कारण तुहाडा फंक्शन इधर उधर भी बिल्कुल भी खराब या कह लो कि पोस्टपोन नहीं कर सकते टेंट लगवाओ बहुत ही वधिया कमाल दे वाटरप्रूफ लैके आते ने मरली टेंट सर्विसेज इन्हों के कोल डांस फ्लोर टेंट फ्लोर स्टेज LED बार्स शैंडलियर लाइनर विद ड्रेपिंग डेकोरेशन का इन्हों को सारा समान अवेलेबल है बहुत खूबसूरत बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह चेयरस एंड टेबल्स लैके आते हैं बहुत सोहने सोहने कारपेट्स लगाते हैं टेंट के मौसम के अकॉर्डिंगली हीटर्स या फैनस भी तुसी लगवा सकते हो लग्जरी पोर्टेबल ट्रेलर वाशरूम्स लैके आते हैं दो सैपरेट यूनिट मैन एंड वैमेन के लिए तो इंडिया वांगू लंबिया लंबिया लड़ियां लगवाओ अपने घर के बाहर पूरी प्रॉपर लाइटनिंग करवा सकते हो मल्ली टेंट सर्विसेज तो नंबर इन्हों का 6479992569 647-999-2569 के उपर तुसी गलबात कर सकते हो मल्ली टेंट सर्विसेज नाल तुहाडी गलबात हो सकती है ते अज असीं कर रहे हैं लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम डेल मुंडी जी दे ऑफिस तो जो कि तुहाडे लई लैके आए हुए ने नायगरा फॉल्स शहर दे विच बड़ा ही कमाल दा बहुत ही यूनीक प्रोजेक्ट जिहड़ा कि एक घर दी प्राइस दे विच तुहानूं तीन घर मिल रहे ने ते इहदे बारे तुसी पूरी इनफॉर्मेशन लो गलबात करो नंबर 416-413-1313 दे उपर 416-413-1313 ते कॉल कर सकते हो ते इन्हां दा ऑफिस लोकेटेड है 7895 ट्रैनमेयर ड्राइव स्वीट नंबर 206 दे उपर लोकेटेड है ते तुसी इन्हां नूं मिल सकते हो शाम दे 6 बजे तक तुहाडे लई अवेलेबल ने ऑफिस दे विच तुसी जाओ डिक्सी एंड डेयरी दे बिल्कुल नज़दीक है ते बड़ी जल्दी आपां इन्हां दे नाल गलबात भी करांगे प्रोजेक्ट दे बारे होर इनफॉर्मेशन लवांगे बट फिलहाल साबर कोटी जी दी आवाज दे विच नैक्सट फरमाइशी गाना तुसी इंजॉय करो ते सुनदे रहो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो

0: मौसम ठीक ठाक है जी। अगस्त 8 हो चुकी है, 28 डिग्री टेम्परेचर पर फील्स लाइक 35 डिग्री। थोड़ी जी हुमस ज़्यादा हैगी आ, मीह तो वैसे दस रहे से भी अज भी मीह पेगा, कल काफ़ी जोर दी तेज़ मीह पिया। सौन का महीना चलता है तो सौन की झड़ी की आप गल करते होंने, या फिर सौन च जड़ा मीह पैंदा ते उह तां फिर सारे साल दे नालों ज़्यादा ही हुंदा। ते जी मौसम ठीक ठाक है, कल नूं भी 28 डिग्री आ, ते मंडे भी 28 डिग्री आ, ट्यूजडे 27 आ, ते फिर वैनसडे भी 27 आ। सो आने वाले दिन, आने वाले जड़ा पूरा वीक आ, वह बड़ा खूबसूरत मौसम थोड़े लैके आ रहा। तो कोशिश करनी चाहिए है जी सानू कि जिंदगी जो सानू हर रोज़ मिलता है उन्हों इंजॉय करिए, परमात्मा का शुक्र करिए, जिन्ना भी कुछ मिल गया उस लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि जे रब सानू इन्ना भी ना दिंदा तो फिर की कर दे, फिर भी कुछ नहीं कर सकते सी। सो जिन्ना सानू मिल गया उस लिए शुकराना बड़ा जरूरी है। तो जी नाल दी नाल थोड़ा थोड़ा अपने विच बदलाव बड़ा जरूरी है। सो थोड़े नाल साडी गलबात 7:45 तक होनी है जी, 7:04 हो गए। सुनाओ की हाल चाल ने। मैनू लगता है, मैनू आस है कि तुसी सारे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी जिंदगी नू बहुत खूबसूरत ढंग नाल मैनेज करन दी कोशिश कर रहे होंगे, ते जी उस दे विच तुसी कामयाब भी हो रहे होंगे। सो गैस प्राइसिस भी घट गई, थोड़ी जी राहत कितने ना कितने मिली आ, ते कुछ ना कुछ चंगा हो रहा हर रोज़। ते उसी गलबात आप करा के प्रोग्राम दे विच 416-233-7368 416-233-7368 ते कॉल की जा सकती है जी। तुसी सुन रहे हो रेडियो अंदाज, मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हूँ। प्रोग्राम दे विच तुसी अपने बिजनेस नू एडवरटाइज करना हो जी, ते जरूर थानू जी आया नू मेरा फोन नंबर 647-234-6000 नंबर से तुसी गलबात कर सकते हो, 647-234-6000, 647-234-6000 नंबर से तुसी अपने बिजनेस नू एडवरटाइज करना हो, प्रोग्राम दे रिगार्डिंग कोई गलबात कोई सुझाव थोड़े कोल हो जी जरूर तुसी कॉल कर सकते हो 647-234-6000। थोड़े नाल साडा साथ 7:45 तक रहेगा, सो साथ दिंदे रहना जी प्रोग्राम दे विच, इदां ही गल्लां बातां थोड़े नाल चलदियां रहणगियां।
1: ओ अज तां कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी उदों ही बणू जदों नवे अपलायंसेस आउणगे। मैं गया लाइनिक गल, उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे मूहरे ले जा खड़ी करती।
2: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नू एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अपलायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888।
3: क्या बात है, बड़े परेशान बैठे हो।
4: क्या बताऊं यार, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस रिन्यूअल आई है, फिर इंक्रीज हो गया, क्लीन रिकॉर्ड है, फिर भी हाई प्रीमियम हर साल पे करना पड़ रहा है।
3: बस इतनी सी बात, अभी फोन करो कुलविंदर गुलेरिया को जो 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं और तुम्हारी होम, ऑटो और बिजनेस इंश्योरेंस प्राइस चेक करके ऑनेस्ट एडवाइस और बेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
4: थैंक्स दोस्त, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी।
3: यदि आप भी अपनी ऑटो, होम, बिजनेस, लाइफ या ट्रेवल इंश्योरेंस के बेस्ट रेट्स और प्रोफेशनल सर्विस चाहते हैं तो फोन करें कुलविंदर गुलेरिया को 647-218-0726, दैट इज 647-218-0726।
5: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 647-702-2023-647-702-2023।
6: लाइसेंस नंबर 10394।
7: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222, 416-265-2222।

झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। नाम तेरा है चंदन जैसा, दिल मेरा महका देता है। खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। चांद बड़ा है जालिम दानिश, उसकी याद दिला देता है। समीन, चांद को देखना किसे पसंद नहीं। चांद भी एक महबूब की तरह होता है, जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले।